उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: उजाला रेडियो।
1: अरे ये कौन गा रहा है? बैजू, दिल धड़क उठता है इसकी आवाज से। कौन है ये? बैजू पारा।
2: आंख में सूरत तेरी

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको। रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है।

0: से जहरा भी खुश मसरूर हैदर भी
1: खुदा का शुक्र अदा करने लगे शब्बीर ओ

0: सुनिए और चलिए बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में, लता मंगेशकर से लेकर आतिफ असलम तक, उजाला लेकर आया है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। 30 दिग्गज आवाजों के सबसे मशहूर गीत एक शानदार और यादगार लाइव थिएटर शो में, सदाबहार नगमों, दिल को छू लेने वाली धुनों और उन गीतों से सजी एक शाम जो आपकी यादों को फिर से जिंदा कर दे। मंच पर लाइव भारत से मौसमी ओबरॉय, शेखर कुमार और आयान मुखर्जी, साथ में बॉयके दादा दीन और निजाम वागिद हुसैन। 5 दमदार आवाजें जो बॉलीवुड की रूह को मंच पर उतारेंगी और लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, वॉयलिन और पियानो की मधुर धुनों से लेकर ढोल और तबले की दिलकश ताल तक, संगीत के 2 खास दौर, बीच में स्वादिष्ट नाश्ते के साथ एक खुशनुमा विराम और कार्यक्रम के बाद फोयर में मीट एंड ग्रीट के दौरान कलाकारों से मिलने का मौका। शनिवार 19 सितंबर मीरवाड एम्स्टरडैम में। कार्यक्रम शुरू होगा शाम 8:15 बजे, प्रवेश शाम 7:15 बजे से। टिकट 15 यूरो से शुरू, स्टैट्स पास के साथ सिर्फ 3 यूरो 50 सेंट। हर स्टैट्स पास पर अधिकतम 1 टिकट। अभी बुक कीजिए mirwad.nl। ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, यादों का एक सुरीला सफर। सदाबहार आवाजों को सलाम, आइए इस यादगार शाम का हिस्सा बने।
1: Vier in juli bestaat 40 jaar.

सारी के सारी तेरे विश करूं पूरी, दिलाडो घर चंडीगढ़ में, फिल्म का नाम है गुड न्यूज, एन हेरलेके इंडियाज कॉमेडी मूवी uit het jaar 2019. Ja, in de regie Raj Mehta, en dat was tevens zijn regiedebuut, met in de hoofdrol niemand minder dan Kareena Kapoor en Akshay Kumar.

0: The biggest Hindustani mix. Ujala Radio. मैं हूं अमी जयराम. आई होप यू एंजॉयड गाना. फिल्म का नाम है स्त्री डांसर और गाना का नाम है गर्मी.
1: टूट गया छोट

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

0: Oejala, Oejala rehe, aapke waaste sinwalo. Zaterdag, Sanitje, 19 september, ko Meervaarttheater mee ha. Amsterdam ke Meervaarttheater mee. Ye jabjis concert hone wala hai. The greatest voices of Bollywood.
1: Mera hi hona.
0: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नोग फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे. ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते. द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड. सैटरडे 19 सितंबर. टिकट गदाम. कुछ टिकट बाकी रह गए हैं. रंग 1 20 यूरो, रंग 2 15 यूरो. एंड हैव यू एन स्टासपास, दैन कॉस्ट योर कार्डचे मार 3,50 €. चेक ऑफ meervaart.nl. इनलोप vanaf 7 uur. Meervaart Theater mee. सैटरडे 19 सितंबर.

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरजमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहाँ है हरगिज़ न भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे तमाम सुनने वालों को आप हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज शुक्रवार 18 तारीख सितंबर का प्रोग्राम करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चुका है, 9:11 खुद मोर्ख अलमाल वेलकम। चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। मैं हूं सुभाष गोविंद, हम आप सभी को आज शुभ का प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, वेलकम। और आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करेंगे। उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203030008 पर दिन में 12 बजे तक आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे दिन में 3 बजे तक। फन मान दख्त तो मैं 7 रख फन 3 तो 3 यूर। और यहाँ के तार का नंबर है, फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। या तो उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा, या आप लोग ऐप पठा सके हैं। आज शुक्रवार का प्रोग्राम हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन से, आप लोग सुनेंगे।

ओम जय अम्बे गौरी। और इस तरह से ये खूबसूरत सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके अनुराधा पौलवाल जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

ओ सनम मेरे प्यार की कसम, उस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। हे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों, एंड शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। वीकेंड है एंड व्हाट खाओ इन द वीकेंड, कोकन का बनाओ खो यार। अगर आप अपने काम पर बैठ करके प्रोग्राम को सुनते होंगे, कहती काम कर रहे हैं, नहीं मैं बाकी कॉफी

ही मेरा बसेरा आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए लीना रमेश्वर भी एश्क दे शहर में प्रोग्राम को सुने और खुद मूर्ख लीना एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। ठीक है, 9:30 का वक्त है, 3:30। ए खुद मूर्ख फाइन वीकेंड टू गवेंस हमारे

और तेरे बिना ये दिल है वीरान, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। हम तो लोग से बता चुकली, तो लोग से पूछ चुकली कि वीकेंड में का बनाओ, कोई वत खाओ फंदा कोकन, वत खाओ फंदा हेटन। अगर आप लोग ऑन बैठ करते होंगे तो स्वादिष्ट ऑन बैठ कीजिए, बैंक ऑन हेटन एट स्मार्क लमाओ। अशोक भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, खुद मोर्ख भाई अशोक, ये गाना तुम्हारे नाम। खुश

मेरी सांसों में, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय संद्रा भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं। खुद मोर प्यार के साथ ये गाना

बिना दिल कहां जाए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे भैया अरुण बाबूलाल के लिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, गाने वाले होंगे करोड़ों का दिल चुराना वाला हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और हमारे प्यारे सुनने वालों अगर भी आप लोग कोई गाना सुनना चाहेंगे तो आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं, हमारा ऐप का फोन का नंबर है 9 3 3 9 9।

वेलियर अपने भी क्या जिंदगी, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने करोड़ का दिल चौराना वाला हॉट मिनट्स माइट मुकेश एंड दरहाग शहर में भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने कोई तो मूर्ख ये गाना तुम्हारे नाम

जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और मेरे शहर में रेशमा एंड रमेश भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, खुद मूर्ख तो ये गाना आप

0: एक तेरह सात और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन देखा जाए 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।
1: आकर भी रुक जाती है
0: और हैतस भाई ना वीकेंड, यार वीकेंड में जो भी आप लोग करेंगे हमेशा प्यार प्यार प्यार के साथ, अगर प्यार ना हो तो प्यार कर ले यार। अभी से आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड हमारी तरफ से प्यार के साथ। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं और प्यार के साथ हम आप लोग के लिए गाना जो घुमा रहे हैं, दोनों साथ में यार, प्यार के साथ। वेल ठीक है, 10 बजने वाले हैं, ना दे रिक्लाम ना दे ब्रेक यार, फिर से हम आप लोग से मिलते हैं तुरंत ब्रेक के उस पार।

0: बस एक लफ्ज है।
1: और मौसम कितना प्यारा है, कितना मोई धूप निकल है, कितना मोई घाम निकल है। यावेल लेकर वीर यार वीकेंड वा के लेकर वीर नाद ब्रेक नाद रिक्लामा बैनक वे तरुख एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम चाहे जहां पर आप लोग सुनते होंगे।
2: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, और उजाला रेडियो का दफ्तर खोले गए हैं, शाम में 3 बजे तक खुला रहेगा, जहां का फोन का नंबर है 9204 9907 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए, जो भी आपको करना है जरूरी खबर के लिए, एंड यू आर है फरमाइश देना है, जो भी काम दिलाना हो। और दनहा सर से राकेश हमें एगो पठाई सेगा अपना तुलक, और का बनाओ कोई का खाओ कोई फंदाख वर्त दाल भात बाकलियाओ मैत अमसोई के भाजी और टमाटी के चटनी यवेल इस लेकर देख रसेप अंदर आवेल कर दोस्त दाल भात मैत बाकलियाओ बचाओ बचाओ या दाल भात बचाओ अमसोई के भाजी और टमाटी की चटनी आश्वितियार ऐ चिस्माक फुरसरा की सालमाल यवेल शुभ दिन आप हर को नाइना वीकेंड, जो भी वीकेंड में आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना, दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए, हम बोले लो तो सर हमार बात मान ले। तो चलिए बरेडा शहर में जहां पर ईश्वर गायत्री भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे खुद मोरख, ये गाना तुम्हारे नाम
1: पागलपन कहती है, पर उन्हें क्या पता जब रूह किसी से इस कदर जुड़ जाए तो वो सिर्फ चाहत नहीं इबादत बन जाती है, और मैंने मैंने तो सिर्फ इबादत की है।

0: है जस्तजू मेरे आखिरी किस्से में, बस दिखेगी तू ही तू।
1: यार कितना मोई गाना, मेरी आशिकी है बस है तू, आयुष सरो से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुनें। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फैंसल पोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रही है, तो गाना को मांग के है एन जगजीत सिंह जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो आप लोग सुनेंगे।

वेल थोड़ा हंस लेना एंड थोड़ा जी लेना, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, गजल जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे देखा जाए देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, और इस गाना को मांग करने वाले हैं देखा जाए सुतमेर में संता के लिए गाना जो पेश है, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुके 10:20 जब 20 मिनट ओवर 3 है यार।

0: मेरे हमराही, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। वेल इतना ढेर है पंद्रह लेगा, थैंक यू वेल अलमाल। Blijft u luisteren tot 12 uur jaar? Jawel, you are Ujala Radio.
1: Hoesje!
0: Ai, ai, ja, ai, boy!
1: Mina, Maya!
2: Aye, so love you, girl.
0: Wel, Rakesh, dan haag share mijn programma met ik gezien heb. Toen je gana, tu mahare naam, bhai Rakesh. Chalande, weekend hai, jaar, jawel!

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों रोतरदम में। बेटा भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मूर्ख बेटा।

बल बल यार नजरिया ना लगे एन मिल जुल के गाओ रे। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एन अब की बार दम सुरिनाम पर हमारी बहू से गाना को मांग के है रत्ना, गाना मांग करी से हम दिनेश के लिए। और सब यहाँ पर फकांसी से है एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं। फाइन फकांसी यार वेलकम। और ये गाना आप दोनों के नाम रत्न

हो तुम ही मेरी पूजा हो, अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनो लो, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 11 बजने में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए ब्रेडा शहर में आसरीना भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने। खुद मोरख ये गाना तुम्हारे नाम।

अरे यार लिख दे तू मोहब्बत तकदीर मेरे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और इस गाना को मांग करने वाली है देखा जाए सत्या भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनेंगे आओगे सजना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार देखा जाए तो राकेश दनहा शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और इस गानों को मांग किया है। फिल्म का नाम तेरे नाम

वल क्यों किसी को, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करीबन 3 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, ड्रीम रूटन 4 LFNUR उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही गीत आप लोग सुनेंगे और वीकेंड है एटवेर सो मोई विशाल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 8 मिनट राइट से चुकल है 11:08 ऑफर हेलो खुद मोरखल माओ पैन वीकेंड तू खवेन हमारी तरफ से लास्ट घंटो लास्ट से इच खत्म हुए यार ठीक 12 बजे तक आपको के साथ हम देने वाले हैं तो 12 एंड नाद ब्रेक नाद रिक्लाम ओफर लेडीज ब्रेक धड़कन एंड धड़कन तुम हो आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना

धड़कन में तुम हो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मोरख एंड भाई अलमेरे में माइक बुद्धू खुद मोरख एंड यू आर उजाला रेडियो है

वाल तेरे बिना दिल कहीं आओ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए लेमर में भाई पवन भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ। एंड ब्रेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख। यू आर है उजाला रेडियो है, आई बॉय द बेस्ट वन।

तेरे बिना मैं अधूरी, जयसिंह श्रिया गोसाल एंड नेहा की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुके हैं, 11:20 और देखा जाए होरन शहर में माला भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्ख। और वीकेंडों में चाहे जहां आप लोग जाइए, हमें साथ में लेके

बल तेरे संग संसना और हर जन्म में बस तेरा ही, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालो, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, एक और ऐसा ही गीत जो हम प्रोग्राम में आप सभी को सुनाने वाले हैं, और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए माइक बुद्धू भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं, और देखा जाए भी तेल बरख में एल्स चमन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से गया। हाँ, नतुलक यार, धीरे धीरे धीरे धीरे आवे है।

और हमारे प्यारे सुनने वाले, जो गाना हम सुनाना चाहते हैं और नतुल के गनवा ये वाला होना चाहिए, और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से आप लोग सुनेंगे। वल तुम क्या मिले जाने जा,

वल तुम क्या मिले जाने जा, ईश्वर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। और आज का रेसिपी जो प्रोग्राम में मिला है, दाल भात और बचाओ एंड टमाटी की चटनी। जबाओ दाल भात एंड बचाओ बेनगुन में बॉय का भी प्रोग्राम को मेरे कृष्ण ने खुद मोर्ख बॉय का जवाल यू आर है, उजाला रेडियो है, कोई खेल है चलन दे आई बॉय इस यू आर उजाला रेडियो।

आजारे जरा आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। आओ देखा जाए भाई राजेश बानार से इस तरह शहर में प्रोग्राम को बारी करके सुने हैं एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और ये कैसी काम करे है सानत वैरक वैरक से भाई और ये गाना तुम्हारे नाम। अरे यार बच के रहना।

0: जाएगा।
1: अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, हम तो लोग से बता ही चुके कि हमसे बचकर कहां जाइए यार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, 20 मिनट 4 12 थोड़ा देर और आई बॉय वीकेंड रेडियो आपके लिए।

बबल यार मेरे यार शब्बा खैर। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए ये दूसरी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं और बनाए से आज ब्राइन बोन मैथ के बेबी यार मैथ के प्यार ऐसा लेकर ऐच स्मार्क कलमा। और चलिए दूसरी ये गाना तुम्हारे नाम उजाला रेडियो है वीकेंड रेडियो

कागची रह गया। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और करीबन 7 मिनट बाकी रहा यार 12 बजने में। आइया उजाला रेडियो और हमारे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे धीरे धीरे हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे।

0: 10 यू आर उजाला रेडियो है, 6 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज इस भाई ना वीकेंड यार, और आप सभी को मेरा प्यार भरा वीकेंड, आप सभी को जबो।
1: हथवा पकड़ ले,
0: पकड़ ली बाटी यार,
1: छोड़े
0: ना ना ना ना। आई या आई बॉय, यू आर उजाला रेडियो।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना वीकेंड आप लोग मोई से बिताइयो, मोई से रहियो, और जो भी आप लोग करेंगे वीकेंड तो मोई से करिए। और आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोग जो हमें ऐप किए, इतना ऐप किए, इतना मोई मोई तो लोग ऐप पठे, धन्यवाद।

और हमारे प्यारे सुनो लोग, हम आप लोग सबसे ज़्यादा चाहेंगे तो का आप लोग मौज से रहिए और जो भी वीकेंड में करिए बहुत ही प्यार से बहुत से दुलार से कर लेना, और हम फिर आने वाले दिनों में आप लोग से जरूर से मिलेंगे। यहीं पर हम छोड़कर जा रहे हैं, यहीं पर हम आप लोग से मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपको दोस्त सुबह शिव गोविंद, बाय बाय, स्वाय स्वाय, फाइन वीकेंड, तालमाओ। और अभी प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुन लेना।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन सैफ अंतखियार और श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला, इन लोगों के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में निखन सैफ अंतखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शुक्रवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक और कल शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ओन्स जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रात 139 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 बजे दिन दखास्तांद क्वर्तो फरफीर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

जाना रेडियो ये है सुनो लो और मैं हूँ लॉयड महावीर सोमदेन कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ आई होप दैट इधर इस वक्त पता ना है कि आई किन आएगा मैं हम तो बाटी वेलकम ऑफ दिस फ्राइडे 18 सितंबर

किशोर कुमार के आवाज में नगमा आपने सुने हैं। एंड या एक रोज मैं टर्प कर, एक रोज मैं टर्प कर तुके हम आपन बना लेबे। सोमख मानो सेन फॉल हार्डन तो दी गेव नीट ऑफ तुझको। Soms moet je wel, soms moet je wel volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, kooit jiwa saati miljoen.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई आई बिनकोट रहा, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में आप सुने फिल्म कैप्टन किशोर का गीत और ये उजाला रेडियो है। मुकेश जी हिस्सा ले रहा है।

मिले नदी के जल में और नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म अनोखी रात से गीत को आप सुनें।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the band of England.
2: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: यू आर, दिस इज हेलेन द गेस्ट फ्रॉम द ANWB। देयर आर एट दिस मोमेंट गेन बिजोंडरहेडन एंड टॉट सोवेर द ANWB verkeersinformatie।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

उजाला रेडियो ये है सुनो लो और मैं हूँ लॉर्ड महावीर सोमदेन कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ एक होप दैट यू देयर इज सम दैट पता ना है कि आए कि ना आएगा मार हम तो बाटी वेलकम ऑन दिस फ्राइडे 18 सितंबर

किशोर कुमार के आवाज में नगमा आपने सुने हैं। एक रोज में टरप के तुके हम आपन बना लेबे। सोमगे मनन सैन वोल हार्डन टोख, दी गेवे नीट ऑप। Soms moet je wel, soms moet je wel volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, kooit jivan staat hier miljoen.

0: सुनिए और चलिए बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में, लता मंगेशकर से लेकर आतिफ असलम तक, उजाला लेकर आया है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। 30 दिग्गज आवाजों के सबसे मशहूर गीत एक शानदार और यादगार लाइव थिएटर शो में, सदाबहार नगमों, दिल को छू लेने वाली धुनों और उन गीतों से सजी एक शाम जो आपकी यादों को फिर से जिंदा कर दे। मंच पर लाइव भारत से मौसमी ओबरॉय, शेखर कुमार और आयान मुखर्जी, साथ में बॉयके दादा दीन और निजाम वागिद हुसैन, 5 दमदार आवाजें जो बॉलीवुड की रूह को मंच पर उतारेंगी, और लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, वॉयलिन और पियानो की मधुर धुनों से लेकर ढोल और तबले की दिलकश ताल तक, संगीत के 2 खास दौर, बीच में स्वादिष्ट नाश्ते के साथ एक खुशनुमा विराम, और कार्यक्रम के बाद फोयर में मीट एंड ग्रीट के दौरान कलाकारों से मिलने का मौका। शनिवार 19 सितंबर मीरवार्ड एम्स्टरडैम में। कार्यक्रम शुरू होगा शाम 8:15 बजे, प्रवेश शाम 7:15 बजे से। टिकट 15 यूरो से शुरू, स्टैट्स पास के साथ सिर्फ 3 यूरो 50 सेंट। हर स्टैट्स पास पर अधिकतम 1 टिकट। अभी बुक कीजिए mirwad.nl। ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, यादों का एक सुरीला सफर, सदाबहार आवाजों को सलाम। आइए इस यादगार शाम का हिस्सा बनिए।
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar, niet 10.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए ये है Ujala Radio और Ujala Radio के जरिए आप लोग के फरमाइश अभी हम लाने वाले हैं और फरमाइश हम पेश करने वाले हैं आज बड़ी खुशी की बात है मुबारक दिन है और दनहाक के रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 42 साल की सालगिरह है 82वां व्यारा है सालगिरह मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अल्लाह मुबारक हो रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू जो मतें आपकी फरमाइश

बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम एक कदम ला रहे हैं आप लोग के फरमाइश और भी उजाला रेडियो रेडियो के जरिए यहाँ से फरमाइश हम पेश करने वाले हैं दनहा के रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए 82 व्याह आज है 82 साल की सालगिरह आज है 82 यार ये सालगिरह की खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो सबसे पहला नामा जो आप सुनने को जा रहे हैं मांग किए गए हैं रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए 82 साल की सालगिरह 82 से फ़ियारख के खुशी के मौके पर लड़कन रॉय आसिफ असलम शाढ़ा शरीदा शरीता वाहिदा और जमीला वालदा के लिए प्यार प्यारी माँ के लिए 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए और 22 लड़कन की तरफ से पर नानी और पर दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज करें प्रोग्राम में

Den Haag keer degene wel die Rosa Liaket hoe zijn die Lukiaas Beyazi zal kesal krijgen het 82e verjaardag. Mubarak maak per lurken Roy Asif Aslam, Sharda Sherida Sherita Wahida en Jamila Maakle per Pieri Valda Kle Bara lurken Nani aur Dadi Kle Bais lurken ke taraf se per Nani aur per Dadi Kle bade pyar mohabbat aur Mubarak Badi ke saath arz ke. अब यहां से आप सुनने को जा रहे हैं लहमा जो की मांग के हैं 12 लड़कन की तरफ से लीवे लीवे नानी और लीवे लीवे दादी रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबाद के साथ.

Den Haag की रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह 82वीं सालगिरह है। मुबारक मौके पर 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ अर्ज किए। रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू जो देन हाग में रहते हैं, आज आपके 82 साल 82वीं है। सालगिरह की खुशी के मौके पर 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी के लिए प्यार दुलार और मुबारकबाद के साथ मोहब्बत के साथ पेश है।

आज है शुक्रवार 18 सितंबर और आज बड़ी मुबारक दिन है, जुमे का दिन है, मुबारक दिन है और आज है फरियारी सालग्रह है। आज दनहा के रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 की सालग्रह है, 82 सफियारा है। सालग्रह की खुशी के मौके पर 12 लड़कन प्यारी प्यारी नानी और दादी के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज किए।

उजाला रेडियो के जरिए और भी फरमाइश है हम जारी कर रहे हैं। देन हाँ की रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू के 82 साल के सालगिरह 82 सफे आठ आज है। इस मुबारक मौके पर बेटियां शारदा शरीदा शरीता वहीदा और जमीला प्यारी प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज करें।

उजाला रेडियो के जरिए हम कुछ देर के लिए फरमाइश को रोक देते हैं. नाद कमर्शियल्स आपकी फरमाइशें उजाला रेडियो के जरिए जारी किया जाएगा. रोजाल याकर तुजैन दिल्लू 82 साल ग्रह जो आज है 82 व्यार्थ है साल ग्रह मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो. अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे. उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है 59 vragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Studio mail naar info@ujala

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन सैफ अंतखियार और श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला, इन लोगों के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपनबर्ग का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। आम्स्टरडैम से श्रीमान हेंद्रक जियावन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में निखन सैफ अंतखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, इपन बरह का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शुक्रवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक और कल शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ओइटवार्ड सेंट्रम ओनसे जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रात 139 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 बजे देंस दखास्तांदे क्वार्टो फरफीर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग एकलनबर्ग लान 7 रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

शुक्रवार 18 तारीख सितंबर को मुबारक दिन है, क्योंकि आज दनहा के रहने वाली रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है। तवे तख्त सफ़े आ रहे हैं। इस सालगिरह की खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में रॉय आसिफ और असलम प्यारी प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबाद के साथ रोजा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल की सालगिरह है, 82 सफे आ रहे हैं। मुबारक मौके पर शारदा, शरीदा, शरीता, वहीदा और जमीला लिव लिव माँ प्यारी प्यारी वालदा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत मुबारकबादी और मोहब्बत के साथ अर्ज करें।

आज शुक्रवार 18 तारीख सितंबर है। तनहा की रहने वाली रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू की आज 82 साल 82 से व्यारह है और इस मुबारक मौके पर लड़कन रॉय आसिफ असलम शारदा शरीदा शरीता वहीदा और जमीला प्यारी प्यारी वालदा के लिए 22 लड़कन की तरफ से पर नानी और पर दादी एंड 12 लड़कन की तरफ से नानी और दादी 12 केंद्रन की तरफ से नानी और दादी और 22 लड़कन की तरफ से बड़ी प्यार के साथ दुलार के साथ पर नानी पर दादी के लिए मोहब्बत के साथ मुबारकबादी के साथ प्रोग्राम में फरमाइश किए। रोसा लियाकत हुसैन दिल्लू जिदनी से फरमाइश था 82 साल के सालगर के खुशी के मौके पर 82 सफियादा के खुशी के मौके पर अब खत्म होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिदनी से फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। आप अपन फरियारी मोय से मनाइए, सालगर मोय से मनाइए रिश्तेदार के साथ। ये सालगर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio 15 aanvragen voor maar 100 euro stuur e-mail naar info@ujala.nl Hamba Oksanen wil ik doen met 4 mailen van Ujala Radio Kuzirie. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond, fijn weekend. Het is, weekend. Dus weekend met Jovi plannen hega. Soms moet je sommige plannen gewoon niet uitvoeren. Gewoon moet je aan mijn plan naar beneden. Neem gewoon rust, ga lekker rustig zitten, doe niks. Dat moet ook wel kunnen, toch? Want we willen altijd in een weekend van alles en nog wat doen. En ja, en soms komt het uit en soms komt het niet uit. Dus ja, soms moet je een keertje zeggen, nou, die weekend, ik koplanda. Helemaal rust. Fijn weekend allemaal. Mooi zijn hier. En vanavond om 11 uur, vierkbaar, herhaling van Koffie Chai Middagshow Soenlina. Bye bye.

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर, और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

ढल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

उजाला रेडियो ये है सुनोलो और मैं हूँ लॉर्ड महावीर सोमदेन। कॉफी चाय मेदक शो में अभी आप सुन लेना हमारे साथ एंड आनंद चंद्रिका सिंह के साथ एक खूबसूरती देर ये सुनना पता ना है कि आए कि ना आएगा मार हम तो बाटी वेलकम ऑफ दिस फ्राइडे 18 सितंबर।

किशोर कुमार के आवाज में नगमा आपने सुने हैं। एक रोज में तड़प के तो के हम आपन बना ले बे। सोमख मानुस हैं वोलहार्डन टॉक, दी गेवन नीट ऑप। Soms moet je wel, soms moet je wel volhouden. Hè? Soms moet je volhouden. En dan wie weet, zei het, kooit jiwa saati miljoen.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।